भजन कबीर नारायण कबीर भजन गुरु भजन सुधीर विराज राम सुन वरा सहारा सुधीर वरा सदा सुन वरा सदा।